शब्द गुरपीरा गहर गंभीरा, शब्द गुरपीरा गहर गंभीरा, बिन शब्द जग भौराना।

माई चरण गुरु मीठे, माई चरण गुरु मीठे, बड़े भाग देवे परमेश्वर, बड़े भाग देवे परमेश्वर।

मस्तक हर प्रभु लिखिया गुरु नानक मिलिया। कई गुरु सिखां दे चरणां दी जपन वालियां दे चरणां दी तोड़ी, गंगा जमुना सुरस्ती गोदावरी ते करें उद्दम तूर साधु की तन, किल बिख मैल भरे पर

चले जान तां तीर्थां दा वी उधार कर जांदे, क्योंकि तीर्थ भी पुकार करदे हन हे वाहिगुरु। संसार दे जीव साडे विच इशनान करके पापा दी मैल सुट जांदे हन। कोई आपदा प्यारा भेज जिदे चरण पैंदियां असीं फिर पवित्र हो जाइए। उचारण करो श्री वाहिगुरु। इस लई भगत नामदेव जी कहंदे हन कि इह सुभाग मैनू ही प्राप्त होया, मैनू

जैसे मानसिक तौर पे अवेसले होके पछड़ते जा रहे हैं। सिख वास्ते मेरे धन गुरु गोविंद सिंह पातशाह जी का हुक्म है, किसी परिवार विच बच्चा पैदा होवे, हुक्म है कि गुरु पिता दा कि पहला नाम तुसी साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी ने पूछ के रखना। कोई किसी परिवार विच बच्ची पैदा होवे, उसका नाम तुसी गुरु ग्रंथ साहिब जी ने पहला नाम पूछ के रखना। सतगुरु कहिंदे ने कि दूसरा नाम सिखा तेन पूछण दी लोड़ नहीं, तेरा नाम मैं ही रख देता। बच्चा होवे उसका नाम लास्ट नेम सिंह रखना, कोई बच्ची होवे उसका नाम कौर रखना। पर दुख आउंदा है कि जदों बच्चा किसे हॉस्पिटल विच पैदा होंदा है, पहला नाम भी घर दे विच ही रख लिया जांदा है, जिहड़ा गुरु नूं पुछिया नहीं जांदा। ते जिहड़ा धन गुरु गोविंद सिंह पातशाह जी ने हुक्म कीता है ओह ते नाम गुआच ही जांदा है। अज अफसोस है कि 14-15 साल के बच्चों भी नाम पुछ के वेख लो कि तुहाडा नाम की है। कोई दसेगा कि मेरा नाम कोई सिमी है, कोई गैरी दसेगा, कोई हैरी दसेगा। ना ही गुरु ग्रंथ साहिब जी का नाम है, ना ही धन गुरु गोविंद सिंह पातशाह जी का बख्शिया होया नाम साडे पास है। अपने आप नूं जिथे सिखी सरूप विच आपां दुनिया के सामने पेश करके माण प्राप्त करना सी, ते अज नाम के पक्षों भी आपां अलोप हुंदे जा रहे हैं, गुप्त हुंदे जा रहे हैं। आपां परिवारक तौर पर सोचने की लोड़ है। गुरु प्यारे सतगुरु जी का हुक्म

प्रकार के आकार नाना प्रकार श्री मुख शब्द गुर सिखन सुनाए हैं योग भोग।

मैं मछली कैसे अपना कैसे देखा तय तय उनसे निकली मछली पानी को बिछड़ी नहीं तो जीवन हो गया। गुरु का सिख जिस वेले गुरु ने हुक्म च रहा है तो बख्शिश ही बख्शिश है जिससे मनमत्र आ जाता है तेरे का की हाल होता है अपने पाने जो चले पाई सो बिछड़े जो मच्छी की जाने सागर के दम पंछी की जाने आकाश के दा वड्डा पाई सजास की जाने गुरु के दा वड्डा है मेहमान जाने वड्डे वड्डा पाक तेरा भाई सज्जा चला जा गुरु कौन ये विचार बनाया है तय चिट्ठी भी मेरी ले जाए जाके गुरु नु देके अरदास करी कदे मैं पापी से ही बख्शिश करी गुरु मैनू भी दर्शना दिता भाई सज्जे ने किया ठीक है गुरु साहब अगे गुरु की चिट्ठी तेरे को ले आया हां ते तो 9 महीने ढक दिता है तेरी तेरी पत्रकार लेके गुरु को चला गया गुरु 18 महीने तक देगा उन्होंने की कर मैं नहीं जा चंगा भी तेरी मैं ख्याल है चलो मना अपने पिंड चलते शहर कोई बच ही गया हो तो भाई सज्जा अपने पिंड चलते आया की वेखिया जिथे कखर की कुली सी उथे आलीशान मकान बनया बिर पिया तक जे सुदामे ने तकिया सुदामे उत्ते भी यह समाया भगवान कृष्ण से सुदाम दोवे सुदीपर की कौन पढ़ते विद्या पढ़ एक दिन समीपर जी की घरवाली ने किया बचे हो की मां जी घर भी लकड़ा कोई नहीं लकड़ा लिया गलगड़ी दोवे सुरत है समीपर विखी की घरवाली ने सोचिया बच्चे हम जल्द भी जा रहे हैं तो लगेगी सुदामे हैं गल सुन कौन है लै थोड़े गए छोले हैं चने गल पोटली बन दिते किसी डांडी भुख लगे ये खा के ते पानी का पुट पी लिया लकड़ा कटिया पंडा बनिया सिर के चुकन लगे गरमकार की रेत मारी डांडी मार रात पै भगवान कृष्ण ने क्या सुनामे हूं कि करिए घर तो पहुंच नहीं सकते जंगल का मौका है सुनामे ने क्या महाराज कोई आ दरख्त है बड़ा वड्डा इन उत्ते चल चलते हैं रात इतने बिताने दिन होगा फिर तक एक दान के उत्ते भगवान कृष्ण जी पै गए दूजे उत्ते सुदाम भुख लगी सुदामे ने छोले वाली पोटली कटी सुदामा सोचन लगा मैंने जिस तरह मैनू भुख लगी है कृष्ण नू भी लगी होनी छोले छोड़े कृष्ण नू तो पता नहीं तो क्यों ना आप ही छक लेंगे भुख बड़ी जालम थी तो सुदामे ने की किया छोले वाली पोटली खोली ते एक फटका मारे तेरी सास संगत जिस वे छोले दंदा थले आए ते सुदामे ने जिथे आवाज आई रात का समा जंगल का मौका टिकवी रात तो दूजे दान से बैठे भगवान कृष्ण ने क्या सुदामिया कुछ खाना भी सुदामे ने छेती छेती मारा इतने भला की खाने मैं तो कुछ नहीं बैठा भगवान भी चुप थोड़े समय के बाद सुदामे जिस वे दूसरा बुका मारे रवादाई भगवान की
कहने लगे भी स्वामी अब खा रहे हैं। महाराज तो मुझे तो पता है इसे पता तू मेरी मां बैठी है मैंने कुछ देर वास्ते एवं गरीबा ना विरास न कर भगवान जी बेचू कर कोई समय में बात प्यारी साल से जैसे ने सुना देने तीजा बच्चों मारे फिर आवाज आई भगवान जी कहने लगे स्वामी भावे मन से चाहे ना मन पर कुछ खा जरूर है मारे तो रुकी ना पता है भगवान जी कहने लगे सानू आवाज भी आई है दंदा की तो सुदामी ने कि हमारे तुम बड़े बोले तुम पता नहीं मेरा शरीर जरा दुबला है ते बारिश हुई है ते शरीर भुखन लग गई है ते मेरा तो दंद से दंद पिया बजता है तो तुम कि कमरे तो उस वेले भगवान पिछले बचन कर दिता जाओ दलिद्री दलिद्र कहते हैं कंगले नीवी जरीर जाओ दलिद्री तो मित्र प्रोह किया है क्योंकि बन के खाना संत जी दिखा के खाना शर्मिंदगी ते खो के खाना गंदगी जो खो के मैं खाता है वह गंदगी खाता भगवान ने वो वचन किया पूरा संदीपा लिखी को पढ़ के विदय भगवान कृष्ण जी तो द्वारका नगरी में मार्ग जा बने तो सुदामे ने कर सारी दुनिया का दलिद्र है कारवाली सुशीला निके निके बच्चे खान को कुछ नहीं मिलता है तो सुशीला ने की अपना दी मैं सुनिया है कि भगवान कृष्ण थोड़े मित्र सुदामे ने किया अपना पर्व भगवान को क्यों नहीं जानते आप भुखे पर मरते जी भगवान कृष्ण वर्गा तो मित्र है नाले वो अवतार भी है नाले राजा महाराजा भी है वो भी को क्यों नहीं जानते कुछ मिल जाएगा इस दिन चंगे मतीत हो जाए सुनाने लेके अपना गांव वाली घर तक तेरी ठीक है पर मित्र को मुद्दे शर्म ध्यान को तेरी बने शर्म का भी वो अवतार भी जरूर जब तो भाई साहब भाई गुरुदास जी लिखते हैं विप्र सुदामा दाल विप्र केंद्र पंडित सुदामा ब्राह्मण दाल भी बाल सखाई मित्र सदाए लागू हुई बावड़ी करवाली सुशीला जड़ी थी उन्हें मजबूर कर दिया स्त्री का हट भी बड़ा जबरदस्त स्त्री अखिल है वो भी बड़ा पर्व लागू हुई बावड़ी मिल जगदीश दलित्र गवाए चलता गिरदा गिटिया कीकड़ जाइए कौन पिलाए ये ठीक है बचपन कट्ठे खेलते रहे खाते पीते रहे पर वो राजा बन गया मैं तो गरीब आदमी किस तरह भी कोल मुलाकात होगी किस तरह भी कोल पहुंचे भाई साहब जी लिखते चलता गिरदा गिटिया कीकड़ जाइए कौन पिलाए उनका नगर द्वारका से सिख द्वार खुलता है कई दिन बाद सिंह भगवान को भी कहे जिसने द्वारका पहुंचे भगवान कृष्ण के महिला और अंदर जान लगा दरबार में रो क्या वो किधर जा रहे हैं जी मैं भगवान को मिल जाए पीछे हट बेचारा सुना मैं डरता आया पीछे हट कोई गल नहीं मैं अभी पता थी गरीबान को हम होते थे एवं घरवाली ने जिद की थी आना ही नहीं पर सुदामा रो मना इतनी दूर आए निराश ही चले जाएंगे भगवान ने तकिया रोंदा क्यों है सुदामे ने किया बड़ी दूर आया आस तार के मित्र को मिलवा केड़ा मित्र भगवान कृष्ण मेरा मित्र राहो भगवान कृष्ण के मित्र अपनी शक्ल वर्ता रहे इतने राजे महाराजे आके खड़ोते कोई पूछता नहीं तू कि मित्र रो के कह लगा है दरबार मैं सच ही दरबार के बीज ला के थके पत्थर से तिलक लगा होया ब्रह्म जा इसी खैर पहला मैं जाके बेनती कर सुदामा बाहर ही खड़ोगे
ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਰੁਕਮਣੀ ਤੇ ਰਾਧਿਕਾ ਜੀ ਚਰਨ ਚੱਲ ਪਈਆਂ। ਦਰਬਾਰ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਿਆ। ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਤਮਾਸ਼ਾ? ਦਰਬਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਆਦਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਚ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਅੱਗੇ ਖੜੋਤ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਨਮੂਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਆਦਮੀ ਇੱਥੇ ਵੇਖੇ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮਿੱਤਰ। ਭਗਵਾਨ ਸਾਡਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡਾ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਤੋ ਦਰਬਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਣ ਲਓ, ਉਹੀ ਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਸਭ ਪਤਾ

सुदामे का नाम सुनिया ही भगवान ने अपने तखत को चार मारे इतना आ गए तो कहने लगे हो भगवान मेरा मित्र मेरा प्यारा सुदामा भगवान कृष्ण जी बचे जा पहुंचे जिथे सुदामा खड़ा है जाके की कीता दूरों देख अयोध्या की दूरों देख दंडौत कर दंडौता कर दंडौत ध्यान दे एक तो होते ना तो मत्था टेक लें एक है दंडौत दंडौत होते हैं सारा श्री दम्मा पर परमेश्वर ने दंडौत बंधन अनुभव अखबारियों को कितने कितने मुझे प्रेम यानी सारा सिंह जो गुरु हो गया थे दंडौत कर सारा श्री पूजा करके दोनों हथ जोड़ के एक गुरु के नमस्कार भगवान कृष्ण जी ने सुदामे देखे जाके पहला दंडौत की दोनों देख दंडौत करे भाई साहब जी लिखते हैं

चले गए, प्यास लगी, पानी दी पाल की थी, एक खूह नजर आया, उस खूह दे कोल जदों गए तां देखिया कि पहला भी कुछ लोग खलोते हुए पानी पानी कर रहे सन, क्योंकि पानी बहुत नीवा सी। खूह दे विचों ओह पानी कढ़ना बड़ा औखा सी। संत ज्ञानेश्वर अते नामदेव जी पहुंचे खूह दे कोल, पानी देखिया बहुत डूंगा है, बहुत नीवा है, पानी कढ़न वास्ते कोई इन्नी रस्सी भी नहीं। ता संत ज्ञानेश्वर जेड़े के पहुंचे हुए महापुरुष सन, अपनी शक्ति दे नाल खूह दे विच उतरे, पानी पीता, पानी फिर भर के शक्ति दे नाल खूह तो बाहर आए, चेलिया नू पियाया, कुछ लोकां नू भी पियाया, ते नामदेव नू कहा, नामदेव तू भी पानी पी ले। नामदेव जी कहन लगे, मैं पानी नहीं पीना जेड़ा तुसी लेके आए हो। संत ज्ञानेश्वर कहन लगे, फिर नामदेव तू भी शक्ति दा मालक है, तू भी भगत है, तेरे विच भी शक्ति है, तू आप अपनी शक्ति दे नाल खूह दे विच जाके पानी पी के ते खूह दे बाहर आ जा। ए सुन के नामदेव जी कहन लगे संत ज्ञानेश्वर नू, मैं पानी तां पीना जे मेरा रमैया मैनू पानी पियावे, नहीं तां मैं पानी नहीं पीना, क्योंकि मैं ओदे नाल प्यार करना ते ओदा फर्ज बनदा कि ओ साडी प्यास बुझावे। ए कह के नामदेव जी उस खूह दे कोल बैठ गए, हाथ विच खड़तालां फड़ लईआं ते नाले

जिस तरह मारवाड़ देश विच नीर कहिंदे ने पानी, पानी दे नाल लोक प्रीत करदे ने। बेल बालहा कर हला और जिस तरह ऊठ

कुरंक हिरण्यों के नाद आवाज एक कंड हेड़ा हुंदा है ओदी आवाज सुन के हिरण जेड़ा है उस आवाज दे पीछे भजदा है वो आवाज नाल प्यार करदा है। ऐ परमेश्वर जिस तरह मारवाड़ दे लोक पानी नाल प्रीत करदे ने ओठ वेला नाल प्यार करदा है कुरंक हिरण जेड़ा है कंडेड़े दी आवाज नाल प्यार करदा है। इसे

तरणी तरतीनु के इंद्र बरसात जिस तरह धरती बरसात नाल प्यार करती बरसात पवे ता धरती खिल उठदी है कुसम फुल नु के बास खुशबू जिस तरह फुल दे नाल पवर

जिथे अंब लगा हुए कोकल जा बैठदी अते खुशी दे नाल गान लग पैंदी है। इस तरह मेरे रमैया जिवें धरती पानी नाल प्यार करदी है, बरसात नाल पवरा फुल दे नाल कोकल अंब

मान सरोवर हंसला हंस जेडे ने मान सरोवर नाल प्रीत करदे ने मान सरोवर ते रहंदे ने। भगत नामदेव जी बयान करदे ने चकवी को जैसे सूर बाल है, चकवी जिस तरह सूर दे नाल अपनी

बनारस रहा करते सन। किसी ने पूछिया कबीर तेरा गुरु कौन है। कबीर साहब कहन लगे गुरु मैं ता किसी नु गुरु तारिया नहीं ता उसके जिदा गुरु नहीं ओदी गति नहीं हुंदी। कबीर तू गुरु जरूर तारन कर। कबीर साहब कहन लगे फिर गुरु किड़ा है ऐस वेले जेड़ा पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी होवे उसनु मैं गुरु तारन करा। ता दसन वाले ने कहा कबीर स्वामी रामानंद पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी हैं ओ गुरु तारण दे लायक ने तू उन्हां कोल चलिया जा। पर एक गल है स्वामी रामानंद ऊंची जात दे ने तू है जुलाया नीवी जात दा। स्वामी जी दे चेलिया ने तेनू स्वामी दे लागे नहीं लगन देना। पर एक तरीका है स्वामी रामानंद अमृत वेले उठ के गंगा ते इशनान करन जांदे नहीं।

ते जिनु गुरु दी लोड होवे उनु दुनिया भुल जांदी है। दोई गल्ला ने, या दुनिया खुश कर लिए या गुरु नु खुश कर ली। जेदा गुरु नु खुश करना है ते फिर दुनिया दा त्याग करना पवेगा। दुनिया दा त्याग घर बार छड़ के नहीं, घर बार तिया पुत्रा माया विच रहंदिया होया परमेश्वर नु याद करना, माया विच रहंदिया होया माया दे उत्ते काबू पा के रखना, मोह माया तो उत्ते उठ के रहना, ए दुनिया दा त्याग हुंदा है। दुनिया छड़ के जंगलां विच जाना कोई त्याग नहीं। कबीर साहब कहन लगे, मैनू गुरु दी लोड़ है। आप अधी रात हुई, घरों उठे ते गंगा घाट वल तुर पए।

ते स्वामी जी तू पहला ही अगे ही दे जाए के लम्मा पया कबीर ते थाई जेड़े रस्ते तू स्वामी जी ने लंघना सी उस रस्ते ते कबीर साहब जाके लम्मे पै गए।

बड़ी मस्ती विच राम राम करदे तुरे आ रहे ने। गंगा दियां पौड़ियां उतरन लगे, देखिया पौड़ियां दे विचकार कोई सुता होया। रस्ता नहीं सी क्योंकि कबीर लम्मा पिया सी। स्वामी जी कोल होए अपने पैरां दी, स्वामी जी कोल होए अपने पैरां दी ठोकर लाई कबीर दे शरीर नूं। ते कहंदे ने भांडे विच जिहड़ी चीज पाई होवे ओही निकलदी। जे किसे भांडे विच दुध पाया है तां दुध ही निकलेगा। जे किसे भांडे विच शराब पाई है तां शराब निकलेगी। पर जिहड़े महापुरश ने इन्हां दे विच तां परमेश्वर वसदा है, परमेश्वर दा नाम वसदा है तां नाम ही निकलना है। स्वामी रामानंद ने पैर दी ठोकर लाई कबीर दे शरीर नूं ते नाले किया उठ राम के राम कहो, ए सौण दा वेला नहीं, ए नाम जपण दा वेला है। भाई गुरदास जी आप बयान करदे ने।

ऐसा शुरू किया। स्वामी रामानंद दे पैर लगा के एक एंड दा के उठ राम के राम को पाई। गुरुदास जी कहंदे ने राम कबीरे भेद ना पाई, राम विच ते कबीर विच कोई फर्क ना रहा। इशनान करके स्वामी रामानंद चले गए। कुछ समय बाद कबीर साहब स्वामी रामानंद दे आश्रम वाल तुर पए। स्वामी रामानंद जदू इशनान करके जांदे सन, दरवाजा ढो के चौंकड़ा मार लेंदे सन और मन करके परमेश्वर नू इशनान कराया करदे सन। इशनान कराण अज भी बैठे मन करके, कपड़े भी पवाए, सिर ते ताज भी रखे, मुकट कलगी भी रखी, पर हार पाना भुल गए। कबीर साहब स्वामी रामानंद दे दरवाजे दे बाहर बैठे। उस पासे स्वामी रामानंद सिर ते मुकट रख बैठे, ता ख्याल आया कि मना हार ते गल विच पाया नहीं, हार जो तक ना पावा पूजा पूरी नहीं होनी, जे ता हार मुकट ला के पावा ताई सोभा वाली गल नहीं, मुकट दे उत्तों हार पै नहीं सकदा क्योंकि हार छोटा। ते चिंता विच नहीं कि सिर ते सजाया मुकट लाना ठीक नहीं ते मुकट दे उत्तों हार पै नहीं सकदा, किवें करा। ता कबीर साहब बाहर बैठे सन, उन्ना जान लिया कि स्वामी रामानंद क्यों परेशान ने, क्योंकि जिहड़े नाम जपदे ने उन्ना विच ते परमेश्वर विच भेद नहीं रहिंदा, ओ एक दूसरे दे मना दियां जानदे ने। ते कबीर साहब ने बाहरों कहा, स्वामी जी हार जी मुकट तो नहीं पै रहा, ते हार दी गंड खोल के हार गल विच पा के फिर गंड मार दे। आवाज सुनी स्वामी रामानंद बड़े हैरान होए, उठ के बुआ खोलिया, बार कबीर साहब बैठे। स्वामी जी कहन लगे तू कौन है? कबीर साहब कहन लगे मैं कबीर हां, तुसा मैनू गुरु दीख्या दीती। स्वामी जी कहन लगे मैं ता तेनू गुरु दीख्या दीती नहीं, अपना चेला बनाया नहीं। ता कबीर साहब कहन लगे स्वामी जी तुसी गंगा ते अमृत वेले इशनान करन गए, मैं पौड़ियां ते लम्मा पिया सी, तुसा अपना चरण मेरे शरीर नू लाया ते कहा सी उठ राम के राम को, उदों दा मैं आप दा सेवक बने। ए सुन के ते स्वामी रामानंद कहन लगे कबीर तू सेवक नहीं, तू ते मेरे नालों भी अग्गे चला गया है, तेरे विच ते राम विच कोई फर्क नहीं रहा क्योंकि तू ते मेरे मन दी भी गल जान लई है। और स्वामी रामानंद जी दा एक शब्द गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज है, कत जाइए रे कर लागो रंग। ऐसा असर होया गुरु दे मिलन दा के कबीर विच ते राम विच कोई फर्क ना रहा।

तीसरे भगत भगत धन्ना जिन्हां बारे भाई गुरदास जी अपनी पौड़ी विच आप बयान करदे ने।

ब्राह्मण कहन लगा जाओ तो नहीं है कोई मखौल ठाकर तेनू दे दिया तेनू की पता कि मैं पूजा करी दी जा के गवां चार तन्ना कहन लगा देख पंडता सीधी तरह ठाकुर दे दे नहीं ता मैं दूसरी तरह लवांगा। ब्राह्मण कहन लगा जट है इन्हे पिछा नहीं छड़ना कहन लगा चंगा तो ठहर मैं ठाकुर लेके आना एक गोल मोल पत्थर कपड़े विच लपेट के तन्ने नू दिता अपना पिछा छड़ाने वास्ते पत्थर एक लपेट कर दे तन्ने नू गैल छुड़ावे गैल अपना पिछा छुड़ाया कि लै ठाकुर।

0: परमेश्वर नू रोटी खवाई, तन्ने ने भी खा ले। परमेश्वर कहन लगे, लै भाई तन्ने आ, रोटी तां असी खा ली, हुण दस तैनू चाहीदा की है? तू याद कीता, मैं आया, हुण मंग तैनू की चाहीदा? तां तन्ने ने हाथ जोड़ ले, कहन लगा भगवान मैनू ए नहीं पता कि अरदास किवें करी दीए, लोक तेरी आरती करदे ने पर मैं तेरा आरता करना। आप जी बयान करदे ने, भगत अन्ना जी अपनी बाणी विच आप,
1: गोपाल तेरा आरता।
0: गोपाल कहंदे ने दुनिया नू पालन वाला परमेश्वर।

सौ पैस मांगो लावेरी। गौ भी चाहिए ते मज भी चाहिए, पर हुण लावेरियां लावेरियां कहंदे ने दुध देण वाली। मज भी चाहिए, गां भी चाहिए, पर ओ जिहड़ियां दुध देंदियां होण।

है परमेश्वर घर बन गया दाल आटा घ्यो ये भी मिल गए पैरी पाण वास्ते जुतियां सोने पाण वास्ते कपड़े भी मिल गए अनाज भी मिल गया गां ते मज भी मिल गई आन जान वास्ते एक घोड़ी भी मिल गई सोहना घर बन गया पर एक चीज की कमी है भगवान कहन लगे धन्या ओ केड़ी कमी कहन लगे परमेश्वर ओ कमी है घरवाली दी भगत जी कहंदे ने घर की गेहन चंगी घरवाली आज्ञाकार तेरा नाम जपण वाली चाहिए भगत जी अपनी बाणी विच

सन तो ज्यो ज्यो सन वढ़ रहे हैं असी खत्म नहीं हो रहे सगा और वधे जा रहे हैं। तू एक दिन जरूर मर जाएगा पर गुरु के सिंह कदी खत्म नहीं हो सकते क्यों कि सच वास्ते लड़दे ने इंसाफ वास्ते अपने वास्ते नहीं।

वाला, संता महापुरुषा वाला, भगता गुरमुखा वाला, पर ना भगत ने ना गुरमुख ने ना सिख ने ना खालसे ने, सिर्फ पहरावे दे नाल

सब तन का गुण सतगुण गुण सतगुण जित मिल हर पड़ता सजना तू तन तन समर्पण कर मैं तुझ बिन अगर

वही नदी के किनारे से दुनिया नु तारन वाला मेरा धन गुरु नानक समाधि लगा के बैठा है।

अमृत नु प्राप्त कौन कर दे हम जिन भिम बरसे अमृत धारा मन पीवे सुर शब्द विचार जिन्होंने भाई शब्द नु सुने कन्ना नु कटोरे बना के निरोल अमृत बाणी का रस पीता खुशकिस्मत गुरु नानक दे दर ते सदा ही अमृत रस्त है पर पीले भागा वाले किसी महापुरुष ने लिखे है कि जिन्हों के अंदर प्रेम की रत्ती बिन अमलों तो खीवे उन्होंने झूठे अमल की लोड़ ही नहीं जिन्हों के अंदर प्रेम की रत्ती बिन अमलों तो खीवे अठे पैर महल विच चानन बरन प्रेम दे दीवे फिर एवें नहीं बलदे भाई दीवे बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज कलेरा वाले महापुरुष फरमाते हैं दीवा जगाने वास्ते बड़ी मेहनत करनी पैंदी पहला तो दीवा बनाइए फिर उसनु पकाइए ओले वास्ते तेल सरसों नपीड़ के करना पैंदा सरसों किस तरह उगदी बड़ी मेहनत फिर तेल पै गया अजे भी नहीं जगदा वट की लोड़ वास्ते कितनी मेहनत करनी पैंदी फिर वट भी लगा रखी है हुण जगाइए भाई दीवा ए सोना दीवा जगाई किवें जगेगा प्यार दे नाल दीवा दे जो भी जग गया दीवा फिर लोकी आपे कहेंगे भी फलाने घर दीवा जगदा पे आखो सी भाई सारे आखो भाई सरत माई भाई जो मेरे धन गुरु नानक दे दरबार च आके जुड़े हो आओ भागा वाले हो अपनी रसना पवित्र करो सेवक दे कन सफले करो प्यार नाल आखो सतनाम धन्यवाद जो गुरु ने प्यारे जुड़ बैठे हो और गुरु जिसने सानू सबों को दिता साढ़े वास्ते बारह बारह साल उदासियां धारनी बेबे ने किया वीर वे देखना निके निके बच्चे श्री चंद लखमीदार तुसी बाहर चले जाते हो ए फिर उदास होके मेरे को आ जाते हैं कई दिन बेबे साडा भी कोई बापू है आखो सी अगला भी कोई बापू दूजिया के बापू अपने बच्चिया मठियाइया लिया के दें खिलौने लिया के दें तरह तरह की चीजा लिया के दें बेबे साडा भी कोई बापू वीर ने इन्हों छाती ना ला के कहनी है पुतो तुहाडा बापू दुनिया का बापू है वीर हुण ना जाए हुण ना परदेसा नू जाए तो प्यारी साध संगत परवकारी दाता जी दोवे बच्चियां नू श्री चंद लक्ष्मीदास गोडियां ते बैठे सानू ठा दिता पुत्र जगत का मिठा मेवा है प्यारे पुत्र पिठ नाल आके लग जावे माता पिता की छाती चढ़ जाती है पर मेरे दाते ने अपने पुत्रों नू उठा के ते बेबे वाल मुखातर होके कहा सुन के गल ए पीरां दे पीर बोले सुन के गल ए पीरां दे पीर बोले रब आप ही पाल सी सारिया नू जद के रब दे नाल सब दुखी दिसन करा की मैं दुआ दिला रहे बेबे मेरे निरंकार रब नाया संसार दुनिया दुखी है काम क्रोलो मोहंकार की अगली साली बेबे मेनू जान दे ना बिठा इतने संसार रोगी हो चुका है ए संसार रोगी नाम दा दारू दिता उस दाते ने जिस दालगुरु पुरब मना रहे हो यही दात बनती है आए कि प्यार नाल पढ़ो पहले सेहत में ले तो पिछे सारी सही संगत गज के अपनी अपनी हाजरियां लगवा लो बाबा जी बचन करते सन जरा संगत जाके रौला पाता है तो इतों कुछ नहीं ले जाता जरा चुप करके बैठा रहा शब्द की धारणा नहीं करता
بابا جی کہندے سن او گرو کی دگاہ کا چور ہے تے جڑا گج کے بولدا ہے تے گرو نانک دے در تے دی حاضری لگ جاندی ہے گرو نانک حاضر ناظر تے آو لگاؤ حاضریاں ساڈا گرپور منایا سفلا ہو جائے پیاری ساتھ سنگتی پہلا سیو بولے پیچھے ساری سنگت

राग गौड़ी माला विच ऋषभ गंधार धैवत सुर कोमल अते बाकी सुर शुद्ध लगते हैं। इस दी जाति संपूर्ण वादी धैवत संवादी ऋषभ अते समा रात दा पहला पैर है। इस राग विच पाया लाल रतन मन पाया शब्द दा गायन कर रहे हैं प्रोफेसर करतार सिंह।

झूठ ना बोली संगत विच खलोता है। हाथ जुड़ गए। बाबा जी मां जान के सेवा कदी नहीं की थी। ते ब्रह्म ज्ञानी बाबा आनंद सिंह जी आखन लगे हुए चनना मां नू तके मार के रब नू घरों बाहर कढ के ते संतां दे डेरियां ते सुख भालदा फिरदा है। वो तेरी मां नहीं वो तेरा रब है। जे तू सुखां दे नाल झोलियां भरनियां ने ते जा अपनी मां दी सेवा कर। तेरा रब तेरे घर बैठा है। ते सतसंगियो कलगी तर पातशाह भी यही आख रहे ने कहिंदे जिहड़ा सिंह अपनी माता पिता दी सेवा नहीं करदा उहदे नाल मेरा कोई संबंध नहीं है। जिहड़ा अपने बजुर्गां दी सेवा नहीं करदा सत्कार नहीं करदा उहदे नाल मेरा कोई संबंध नहीं कोई रिश्ता नहीं। उहदे नाल रिश्ता है जो अपने माता पिता दा

दुख दारू सुख रोग भया जा सुख ताम ना होई, तू करता करना मैं नाही जाहु करी ना होई, बलिहारी कुदरत वस्या।

जिन हर हर श्रद्धा हर प्यास, हर हर नाम मिले तृप्ता से, मिल संगत गुण प्रगाश। जिन हर हर हर रस नाम न पाया, ते भागहीन जम पास। जो सतगुर शरण संगत नी आए, त्रिग जीवै त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुर

मन भो करया ऊडे ऊड आवै सै कोसा तिस पाछे बछरे छरिया तिन कवन खिलावै कवन चुगावै मन में सिमरन करया सब निधान दस अठ सिधान ठाकुर कर तल धरिया जन नानक बल बल सद बल जाइए तेरा अंत ना।

से जन युग में सुखवासी से मुकत भय जिन हर ध्याया जी तिन टूटी जम की फांसी जिन हर निर्भो ध्याया जी तिन का भौ सब गुवासी जिन सेविया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से धन जिन हर ध्याया जी जिन नानक तिन बल जासी।

अनेक पढ़े वो सिमरत शासत जी कर क्रिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो पावे मेरे हर भगवंता तू आद पुरख।

तेरा कार्य सब सवारना सबना गलां समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहिबा क्या नाही घर तेरे घर ता तेरा सब कुछ है जित देवे सो पावे सदा शिव सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनके मन वस्या वाजे शब्द घनेरे कहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं घर तेरे साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाईया कर शांत सुखमन आए वस्या जिन इच्छा सब पुजाईया सदा कुर्बान किता गुरविटो जिस दिया वडियाईया कहे नानक सुनो संतो शब्द धरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तित घर सुभागे शब्द वाजे कला जित कर धारिया पंच दूत तुदवस्त कीते काल कंटक मारिया धुर करम पाया तो जिनको से नाम हर के लागे कह नानक तै सुख होआ तितगर अनहद बाजे अनज सुनो बड़े भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रप पाया उतरे सगल विसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन भय सरथे पूरे गुरते जानी सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर आभर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे मुंदामनी महला पंजवा थाल विच तिन वस्तु पयो सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सब अधारो जिसका सबस अधारो जेको खावे जेको पुंचे तिसका होए उधारो।

सुबह करके और सात समुद्र में की मत कहो। काट वनस्पति सगरी लिख गए हो के लेखन काज बने हो। सार सुता पकता करके जब कोट गणेश के हाथ रखे हो। काल कृपाण न बिनती

तेरो अंत न कूट बराद हमारे अनक विधि समझाओ हम अज्ञान अल्प मत थोरी तुम आ

सेवा ये बड़ा वड्डा पदार फिर गुरु कर दी सेवा ये महान दात है। किसी महापुरुष ने सेवा दे मतलब क्या।

गुरु नानक पातशाह संसार नूं उतारदे होए जदों सिद्ध मंडली विच पुजे, धन गुरु नानक सच्चे पातशाह जी दे अमोलक दरगाही बचन सुन के सिद्ध बड़े प्रसन्न होए।

वाणी राजा हरिचंद बड़ा धर्मात्मा राजा हुए। इसकी घरवाली भी बहुत धर्मात्मा सी। वड़ी राती उठ के सतसंगत विच जाके बैठना ते फिर राजे दे उठन तो पहला आके फिर आके सौ जाना। इसे तरह कितना समा सतसंग करती रही, नाम दा रंग चढ़दा रहा, अकाल पुरख वाहिगुरु दी कृपा होंदी रही। क्योंकि रंग लागत लागत लागत है, जेहो जी कोई संगत विच बैठदा है हौले हौले ओहो जिहा ही रंग चढ़ जांदा। क्योंकि पंछी जेहो जे ब्रिश ते बैठेगा ओहो जे ही फल प्राप्त होणगे। जे अंब दे ब्रिश ते बैठा तां अंब ही मिलने हैं। इसे तरह मनुख दा जीवन जे साकत पुरशां विच जा पवे तां पापां दा भागी बन जांदा। जे सत संगत विच जांदा तां इसते पुन वध जांदे हैं। राजा हरिचंद दी घरवाली रोज सत संगत विच जाके गुरबाणी दा कीर्तन सुनना आनंद मानना, क्योंकि ए भी आत्मा दी खुराक है। जिस तरह साडे शरीर नूं खुराक दी लोड़ है, साडी आत्मा नूं भी परमेश्वर दे नाम दी लोड़ है। ओ नाम दा भोजन छकदी है जो साडे अंदर, जिदे सदके साडा शरीर चल रहा है ना, उसनूं ही भोजन दी भुख लगदी है। पर ओ भोजन नाम दा छकदी है। उच्चारण करो श्री। तो तारा राणी सतसंगत विच रोज जाना ते राजे दे जागन तो पहला आके फिर सौ जाना। अज अचानक राजे दी जाग उगड़ी तां की तकिया कि राणी नहीं सुती। मन विच शक पैदा हो गया कि किधर जांदी है अद्धी राती उठ के। मन विच सोचिया जितने तक कोई अखी ना वेख लईए तां उस तरह एवें किसे नूं कलंक लाउणा या कह देना चंगा नहीं है। चंगी तरह शान बीन कर लैनी चाहीदी है भई किधर जांदी है। राजा अज सुता नहीं पर उवें ही कराड़े मारन लग गया। ते राणी ने समझा भाई हुण आराम विच हो गया है। ते राणी सतसंगत वल तुर पई। मगरे मगरे राजा जा रहा है। राणी जदों सतसंग विच जा पहुंची ते मन नूं त्रयास आया भाई चलो किते माड़े पासे तां नहीं ना जांदे, किते माड़े पासे तां नहीं ना गई। अकाल पुरख वाहिगुरु ईश्वर दी भगती विच ही जुड़ी हुई है। पर राजे ने राणी दी एक खड़ाऊं चुक के घर ले आंदी। भाई पुछांगे भाई तेरी दूजी खड़ा किथे है। ते राजे ने आके संदूक विच उस खड़ा नूं बंद कर दिता। राणी जदों कीर्तन सुनदियां कीर्तन दी समाप्ति हुई ते बाहर निकली तां एक खड़ा दा जोड़ा पे। बड़ी डरी कि मैं राजे नूं की जवाब देवांगी। जदों पुछेगा भाई दूजी खड़ाम किथे है तो मैं जवाब की देंगी। मुड़ के जाके साध संगत विच जाके बेनती कीती कि साध संगत अरदास करो मेरी दूजी खड़ाऊ मैनू मिल जावे, मेरी पत रह आवे, मेरी इज्जत रह आवे। जे राजे कोल ए पोल जार हो गया तो राजा मेरे ते शक करेगा। उच्चारण करो श्री। सारी संगत ने जदों अरदास कीती तां अकाल पुरख वाहिगुरु ने ओह जी पुरानी खड़ाऊ परमेश्वर ने भेज दिती। कोई पछाण नहीं सकदा कि ए पुरानी है जा नवी है। राणी आके उसी तरह रोज दी तरह सौ गई। सवेरे जदों राजा उठिया तां कहन लगा आ जरा अपनियां खड़ावां तां दे, मेरियां हैन नहीं इत्थे नेड़े ते मैं इशनान कर दवां। उच्चारण करो श्री वाहिगुरु।
ਰਾਣੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਖੜਾਵਾਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੜਾਵ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸਾਂ, ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ। ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਪੇਟੀ ਖੋਲੀ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੜਾਵ ਹੀ ਪਈ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੱਚ ਸੱਚ ਦੱਸ, ਇਹ ਦੂਜੀ ਖੜਾਵ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਤ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ, ਮੈਂ ਵੀ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਤੇਰੀ ਖੜਾਵ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ, ਪੇਟੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜੰਦਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਦੂਜੀ ਖੜਾਵ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ ਏ? ਤਾਂ ਰਾਣੀ ਦੇ ਨੈਣ ਕਟੋਰੇ ਭਰ ਆਏ। ਆਖਿਆ, ਰਾਜਾ, ਇਹ ਸਭ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਜਿਆ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਰੱਖਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਈ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਬੋਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵਿਛੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਵੀ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਸੁਹੇਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਚ ਨਾਉ, ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ।

गुरु जी दी तारीफ दी गल सुन के चंदू दीवान खुश होने दी बजाए गुस्से विच लोहा लाखा हो गया। माया तारी अत अन्ना बोला, शब्द ना सुने बहरोल कचोला, दे महवाक अनुसार चंदू दीवान कहन लगा, ओ किथे मैं शाही दीवान ते किथे अर्जन देव एक फकीर, किथे राजसी शक्तियां ते किथे साधां दा डेरा, ओ तुसी चुबारे दी इट मोरी नू लाए हो। चंदू दीवान गुस्से विच लोहा लाखा होया कहन लगा, भावे तुसी मेरे मुताबक चोन ठीक नहीं कीती, पर फिर भी मैं तुहाडा मान नहीं तोड़दा, जाओ जाके सगन पा आओ। ए सारियां गल्लां दिल्ली दियां सिख संगतां ने सुन लिया, उन्हां दा मन बड़ा परेशान होया, क्योंकि सच्चा सिख कदे भी अपने गुरु दी निंदिया नहीं सुन सकदा। गुर की निंदा सुने ना कान, कानो घूर के पिछा हटांदा ए, जे तू प्यार नाल नहीं बिठाउण जोगा, हंजू वेख के कास तो हसदा ए, जे तू रोंदिया नू नहीं वरौन जोगा, कानो दुख दे दिला नू दुखांदा ए, जे तू जख्मा ते मलम नहीं लौन जोगा, कानो बंदिया कूड़ विहासदा ए, जे तू नेकियां नहीं कमाउण जोगा। दिल्ली दियां सिख संगतां ने गुरु अर्जन देव जी महाराज दे नाम एक चिट्ठी लिख के हे क्यों भेजी आवे।